0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यहां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तो माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तक ही है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नास करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पर सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साक्षी नु सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां, जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही वचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग दे जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे ते बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत वचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। ये साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों, इसे करके विस्तार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल्ला छड़ दो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों, आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने एक ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा बचन

0: सुपते निसमें सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सीदे कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आवे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क है, किन्ना किन्ना ज्ञान है। कई प्रश्न करे, चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आ

0: सुपती नित मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: चेला होगा कोई वह अपने गुरु को समझाया करेगा जा के नहीं गुरु देव यह गल इस तरह तुम हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन गलों का पता भाव हूं भी तो समझाते ही आके हूं भी तो कह रहे गुरु ग्रंथ साहब जा पिशौर सिंह प्यारा सिंह अर्गे उठ खड़े हुए थे हूं होर ही खड़े दसम ग्रंथ के विरुद्ध होर गल कर रहे ने यही जी तो गल है ये कह रहे इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडिया बुद्धियां ज्यादा काम कर दिया ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलता है कई तां इहो कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खावे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाना छड़ देंगे क्यों नहाँदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जा ये की नहा के लेना है ते जे उन्हों कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहिंदे कित्थे रोटी महाराज कहिंदे रोटियां खाण नूं तकड़े होणगे कलयुग च ओ चीजा खाई जाणगे सारिया जे कह लो इशनान कर लो फिर उत्थे ही डिग पिया करनगे मेरा तो शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तो होवेगी नहीं लोगों के होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानू खाण नूं मिलदा जिथों खाण नूं मिलेगा उत्थे पैरी हाथ तक लाया करनगे गोडी हाथ लाउणगे ये बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नूं ना मिलिया करेगा उन्हूं गाला कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोगों के मन अंदर कलयुग दे विच विशियां दी गल जे तो विशियां दी गल करो फिर तो जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उत्थे दा बेअंत इकट्ठ हुंदा ते जिथे कोई भजन पाठ दी गल होवेगी उत्थों लोग भज्या करनगे जां इक होर कहिंदे ने जिवें सारा दिन बंदा बस विशियां नूं ही चित वी जाया करे कलयुग दे विच वी कदों रात पवे कदों विशियां च परिवर्त होईए कहिंदे जिहड़े लोग कवि लोग होणगे उन्हां दी जिहड़ी चंगी कविता होगी कलयुग दे विच लोग चंगी कविता नूं सुणिया नहीं करनगे कहणगे एवें फालतू गल्लां करदा जे उही कवि किसे इस्त्री दी कविता सुणा देवे विशियां बकारां दी भाव माड़े गाने जिवें अजकल चलदे ने फलाना गा रहा फलाना गा रहा उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू ये झूठियां गल्लां करदे हैं ये उन्हां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने तां फलाना गा रहा फलाने तां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बढ़िया उहनूं 151 251 उत्थे नाल 1 रुपया जरूर लैणा तो वो जे थोड़े गाउण वाले उन्हूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख 1 रुपया लैणा उन्हूं नहीं कहिंदे 1 रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उन्हां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समय च जिहड़े लोग चंगे होणगे उन्हां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समय च की वर्तारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र प्यार।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक तो बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग बस जदों कदों मन च विशे विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़िया गल्लां करनिया बस यही मन च चितवणगे कि कदों विशिया च प्रवृत्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा नौ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वह अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुत्रे।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने वह अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोगों नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा काम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जट्टा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटा लंबिया लंबिया बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी उह विछा लैणी वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विशियां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे ते अंदरों कम जिहड़े ने उह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया और कुकर्म इन्ने करिया करनगे भई, ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह की दुनिया हौली हौली बन जाएगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लागे।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोणगे भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जाएगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने उह संसार नूं ज्ञान दियां, ताहीं एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे,

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत जो

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्ने भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतू करते ने चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुदे कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

0: क्यों पए एक दिन पिक सतगुर की मर्जी संगत हाथ जोड़ की अर्जी।
1: एक दिन सतगुरु महाराज जी की मर्जी जदों बहुत प्रसन्न बैठे होण ते भाई सिंघो कुछ पुछना पुछ लो। इस तरह गुरां दे इशारे विच समझ गए कि सतगुरु कुछ दसना चाहते हैं। जो किसी का प्रश्न है सारी संगत ने हाथ जोड़ के इस तरह गुरां दे अगे बेनती की है।
0: साचे पातशाह कहिए चतर वरण मुंडत ही लईए।
1: महाराज जी ये कृपा करके सानू दसो ये जे चारे वर्ण ने सारे खत्री ब्राह्मण सूद वै साधक और भी बड़े बड़े लोग ने ये सारे जने मुन ही ने मुंडत भाव हरेक ने केस दाढ़ी कट के बिल्कुल ही सफाया।

जमीन जायदाद नहीं खुदा के लिए रब की मर्यादा चलाने अपने पुत जिथे बारे ओदा तीर्थ किथो लभोगे। मगर मैं कहन लगा सा कुछ शिकारी ने ओ जिन्ने पंछी लै गया ओदे जोगे ही रह गए। अरदास करो ऐ वचन मेरे नाल पढ़ो कि संसार विच एक एक जीव दी अरदास होवे कोई जाना कोई सेवक रब दा प्यारा आवे अमृत छकावे ते मैनूं जोड़ आनंदपुर नाल दे जोड़ गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल दे जोड़ मैनूं गुरु पंथ की मर्यादा नाल दे। आपो अपनी गल ना दसे हर सिओं दे।

आप सज कभी आवाज मारियो आवाज जरूर मारियो आउंदा दे आउंदा दे आवाज जिन्हें मारी उन्हां दे घर आउंदा दे धन गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठा कह रहा है तुहाडा चौकीदार आउंदा दे आवाज मारियो फिर एक बार रिपीट करावा आउंदा दे आवाज मारियो मारो अंदर आत्मा तो आवाज आवो सज्जना हाँ देखा तर अपनड़े खड़ी तका तर अपनड़े खड़ी तका

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है, धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है? उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

करो अमृत वेले उठ के अमृत वेले खुराक खाया करो सर्व रोग का औखद नाम बोलो सर्व रोग का औखद सारिया बीमारियां दी दवाई दे सतनाम श्री वाहिगुरु जेड़ा रब दा नाम है अवर अपाव सब त्याग गया दारू नाम लिया छड़ दियो सारे अपा करने अपन बड़े मिलते ने ओ जी औलाद आखे नहीं लगती ते लागो गवांडी की सलाह देंदे की करो कोई उपा करो अपा शब्द वरतदे ना इथे गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सगल अपाव सब त्यागया अवर अपाव सब सारे अपाव करने छड्ड दित्ते आख्या की कीता फिर तुसीं

0: फिर लो दे फुहारे छुट्टे प्यो दी जिंद निकलदी निकलदी पुत दे मुंह वल वेख रही आ ते प्यो पुत वल वेख के कह रहा धन सिखी ते पुत प्यो नूं वेख के कह रहा धन सिखी मेरे पिता जी तुसी धन जे सिखी च पूरे उतरे हो बजुर्ग होके भी ते बजुर्ग प्यो कह रहा वा मेरे पुत्रा तू नौजवान होके ये चरखड़ी दे दंदियां ते बह के सिखी न पाई आ तेरी धन सिखी कदी इना ध्यान दियो एकाग्रता भी जो सिजो कंबली अल्लाह वरसे मैं हूं अगे जी
1: जाए मिला तिना सजना टुटो नाही ने हो
0: जावा उस मालक दे चरणा विच जावा दर्शन ददार करा अपने मालक नूं मिला गलवकड़ियां पावा जेड़ी मेरी भोखिया भवरे की भोखिया वाशना भवरे की भोखी है वाशना मगर असी कितना दे भवरे बन गए असी फुलां दे प्रेमी बन गए वाशना दे नहीं आखो सतनाम श्री फर्क समझ लिया कि नहीं आपां घर घर दे विच गुलदस्ते एडे एडे फुलां दे लिया के रखे ने ते किसे भौरे नूं आखो किधर चलिया कहिंदा मैं फुलां दी फुलवाड़ी चलिया कहिंदा की लैण कहिंदा मैनूं फुलां नाल प्यार आ फुलां दी सुगंधी नाल प्यार आ ते तुसीं आखो आ जा कोई गल नहीं अज मेरे घर चल मेरे घर भी बड़े फुल ने ध्यान दियो मेरे घर भी बड़े फुल ने ते चार सवेरे घूम के चल जूगा उन्हें उन्हां फुलां नूं वेखना ही नहीं क्योंकि उन्हें पुछया मुन लगे नूं मुड़ चलिया वा उथे कोई अलोकार गुलाब दे फुल नहीं आवे किड़े किड़े सुंदर गुलाब दे फुल ने उन्हें कहा सजना ए फुल बनौटी ने इन्हां विच कुछ नहीं जिहड़ियां साडे घरां विच भी बाबियां दियां फोटो लगियां ने ना करमा वाला गुरु दा सिख इन्हां बाबियां वल नहीं वेंदा क्योंकि उन्हां दे विच सुगंधी नहीं सुगंधी आ ते केवल जागदे जोगदे जागदी जोत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक बाणी विच गुरु नानक साहिब ने वचन कीता है रसिया होवे मुश्क का बोलो रसिया होवे तब फूल पछाणे जे कोई जीव आत्मा प्रेमी होवे वाशना दी ते ओ आखूगी ये गुट्टे दा फुल आ ये चमेली दा फुल आ ये फलाने दा फुल आ ते जे वाशना दा ना प्रेमी होया केवल फुल दा होया ते आखूगे फुल ने इस करके गुरु दे प्यारे हो वाशना नाल प्रेम करना है ओ वाशना गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों मिलदी आ केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों मिलदी आ दुनिया ते कोई पीर कोई पकंबर कोई देवता जेदी पूजा करन आप जी नूं नहीं किया इको ही गल आप जी नूं गुड़ती दे विच पाई गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई आख दियो एक बार गुरा एक दे बजाई जिया का एक दाता सो मैं उस गुरु दे लड़ लगो जेड़ा सारे संसार दा प्यो आ सारे संसार दा पिता है मेरी हाथ जोड़ के आप जी सारे नूं बेनती दे अगले एतवार इस वेले नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है अमृत वेले 7 बजे दा टाइम रख देना है क्योंकि दीवान लगन तो पहलों पहलों अमृत दा बाटा तैयार हो जाए मेरी हाथ जोड़ के बच्चियां वीरां गुरसिखां सारिया दे चरणा विच बेनती है गुरसिख प्यारियो ये फर्ज समझो जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की जो आप जपे अवरै नाम आप अमृत छकिया जे ते दसो संसार दे लोकां नूं यह अमृत बड़ा मिठा है दसो संसार दे लोकां नूं कि अमृतधारी सिख दा जीवन होवे जन्म सुहेला असी सुखी हां लोकां नूं दसो कि असी अमृत जिदन दा छकिया वा साडे घर विचों 100 वैवता निकल गईयां साडे घरों विचों बीमारियां निकल गईयां साडे घरां विचों परेशानियां निकल गईयां संसार दे लोकां नूं प्रेरो होर नेमियां प्रेमियां नूं प्रेरो मेरे सतगुरु कृपा करन कलगियां वाले पातशाह कि उस दिन आपां वड्डी गिणती विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे धीआं पुत बणीए ते मेरे सतगुरु दीआं असीसां लईए प्रचार करन दा कथा करन दा संत बाबा हरदेव सिंह लूलो कलां वाले एक दिन बचन किसे दी कैसट विच मैं सुन रहा सां ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਬੜੀ ਬੀਜਦੀ ਦੀ ਉੱਗ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਵੱਢ ਵੀ ਬੜੀ ਲਈਦੀ ਮਗਰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਬੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਰਾ ਲੈ ਪਤਾ ਉਦਣ ਲੱਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਇਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਕੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਭੁੱਲਾਨਾ ਚ ਤਾਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
3: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

0: हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभिया, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना, ध्यान दियो तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वो तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती तोतिया पोस्त नहीं खाना, ते सारे ही तोते उडदे उडदे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए, ते सारिया ने चुंझां भरियां पोस्त खाई जांदे ने, ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी ओह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है, नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणे ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह दा नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच ए छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ, घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चां नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद दी रसना तो मुबारक वचन सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, फरीदा मैं भुलावा पगदा मत मैली होए जाए।
0: बस इस गल उते असी अटक गए सारे, आखो सतनाम श्री
1: वाहिगुरु।
0: इथे आण के कई बार मत्था टेकन लगे भी सोची दा मत्था थले ना लाइए, पग ना मैली हो जाए। किते भाई गुरदास जी नूं पढ़ के वेखो, होए नमाणा टह पवे, होए नमाणा इथे जदों आवे ना। ते मैं एक बार आप जी नूं बहुत बार बेनती कीती, क्योंकि दो तीन साल तो आप जी दे जोड़े झाड़दियां समा हो गया है, दास ने कई बार बेनती कीती, सज्जनो जे नवां घर बनाउणा होवे ना, नवां घर ते पहले घर नूं की करना पैंदा है, की जी सोचो, ढाउणा पैंदा है। जे पहला ढवे ना ते उत्ते नवां कि तरह बणू। जिहड़ा परमजीत सिंह हंकार ना भरिया वा गुरमुखो प्यारे हो, जे गुरु दे अगे आण के टह ना पिया ते गुरमुखां वाला जीवन गुरु कितना बख्शू। पहलो हंकार रूपी महल नूं ढाउणा है इथे आण के, पहलो टह पवां। एक थां गुरु अमरदास महाराज पातशाह ते मालक ने संसार दे सृष्टि दे भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दोहे बन आवे, किते पता नहीं किन्ने रंग विच रती गई होगी अंदर आत्मा, रब्बी रंग विच जदों कह रही होगी होए